0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं? यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है। अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है। आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
2: Melbourne Museum की नई भव्य प्रदर्शनी Rome, Empire, Power, People अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। Easy Electric SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricsec.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
2: मेलबर्न में खसरा वापस आ गया है और तेजी से फैल रहा है। यह इंतजार करने का समय नहीं है। अभी भाग लेने वाली स्थानीय फार्मेसियां 20 से 59 वर्ष के वयस्कों के लिए मुफ्त MMR वैक्सीन दे रही हैं। कोई खर्च नहीं और कोई देरी नहीं। इंतजार मत कीजिए और जोखिम मत उठाइए। आज ही अपनी स्थानीय फार्मेसी, GP या काउंसिल क्लिनिक में वैक्सीन लगवाइए। अधिक जानकारी के लिए www.phu.org.au पर जाएं।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहाँ देखें चमकते खनिज, टिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
2: क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा। क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है। मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं, और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है। अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
6: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा।

0: रहा था। नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात।

0: जय जय बजरंगबली की जय, हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंगबली की जय।
1: ये किस्सा बहादुरी का, बच्चों को बहलाने का सुना, एक किस्सा मेरी तरफ से भी, लेकिन बहादुरी का नहीं है ये। मीनू जी, बचपन में एक बार हम कश्मीर घूमने गए थे, जहां पर ठहरे थे उस घर के पड़ोस में एक बड़ा सा बगीचा था, फलों के पेड़ जैसे लदे हुए थे, चेरीज सेब वगैरह वगैरह तमाम तरह के फलों से। एक दिन अपने कजिन ब्रदर के साथ, जो कि हमारे साथ रुके हुए थे, वो बड़ी सी दीवार थी उसको कूद कर बगीचे में पहुंचे, फल को तोड़ने की जहमत करी ही थी कि माली अटपका। भाई वहां का माली था, अब हम बच्चों को क्या खबर, हम थे 10 साल के मासूम और वो भारी भरकम शरीर वाला फुल साइज आदमी। हमारे भाई साहब जो साथ में थे उन्होंने भी देखा और कस के हम दोनों ने दौड़ लगाई। और भाई साहब तो दौड़ के आगे बढ़ के बस किसी तरह से दीवार पार कर गए, मैं पीछे आया तो मैं लटका रह गया। पीछे माली खड़ा, फिर माली से रिक्वेस्ट करी और उसने मुझ कमर से पकड़कर ऊपर करा और मैं दीवार पे चढ़ा दिया। दोबारा लाइफ में ऐसा करने की हिम्मत ना हुई बाबा।
2: आपका ये किस्सा तो मजेदार तो है, पर ये आपके मुंह से 10 बार सुन चुकी हूँ एटलीस्ट मैं। किस्से होते ही ऐसे हैं जिसमें खासकर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, एक ऐसी छाप छोड़ देते
1: हैं। हाँ हाँ, छोटे छोटे किस्से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। हम बार बार किसी न किसी मौकों पर बैठकर दूसरों से शेयर करते हैं और क्या करते हैं, मजे लेते हैं। मैं हूं विवेक कुमार, 92.3 FM गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इन्हीं किस्सों को लेकर बातें करेंगे, किस्से जिंदगी के। जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है सो अपनी जगह, पर बाद में शेयर करने में बड़ा आनंद आता है।
2: और मैं हूं मीनू, वेलकम टू गीतांजलि। किस्से जिंदगी के दिलचस्प विषय है, साथ ही एक इंटरव्यू डॉक्टर प्रेम द्विवेदी, एक साइंटिस्ट जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर छोटे छोटे किस्सों के साथ। तो बने रहिए, आप सुनते रहिए और मजे लीजिए।
3: सुन लो, सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे।

0: टट्टू वट्टू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे।
1: जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर एक कहानी पीछे छूट जाती है और दिल के किसी कोने में निशानी छोड़ जाती है।
2: वाह, और बाद में हम इन्हीं किस्से और कहानियों को साझा करने में नहीं चूकते।
1: शाम की एक कप चाय और दोस्तों का साथ, पुरानी बातों को याद कर हंसना, अपनी नादानियों को सोचकर बाद में मजा आता है तो कभी अटपटा भी लगता है।
2: अच्छा, किस्से भी बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई आपका हो या किसी फ्रेंड से या किसी की जो जिसको आप जानते हो उसके अचीवमेंट्स पर, उसकी उपलब्धि पर होता है। जैसे कहते हैं ना कि देखो फलाने देखो कैसे कितना पढ़ाई करा, क्या कैसे करा, वो देखो ऐसे करता था ऐसे करता था। और कोई कभी कभी किस्से होते हैं अपनी गलती या कुछ हमने अचीव, कोई पॉजिटिव चीज़ कुछ हुई हो आपकी ज़िंदगी में तो उसको लेकर भी होता है। कभी कभी हम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ कि भाई हम फला जगह गए थे, वहां पर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, देखो भाई होटल में जाना तो ये मत करना,
1: बी केयरफुल। या फिर जनरेशन गैप्स, मतलब अपने बचपन या जवानी में किस तरह हम पढ़ते थे खेलते थे, जो कि आजकल के प्रचलन से काफी डिफरेंट होता था। जस्ट शेयर कर बच्चों के साथ, फिर दोस्तों के बीच, यही मजा है सबका साथ सबका विकास। इट टेक्स अवे डे टू डे स्ट्रेस एक्चुअली।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अगर

0: जिंदगी छोटी छोटी मुलाकातों, अनकही भावनाओं और कभी ना भूलने वाले पलों की एक खूबसूरत किताब है। चलिए जानते हैं डॉक्टर प्रेम द्विवेदी से, जिन्होंने कुछ इसी तरह के भाव से ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो पेश है इंटरव्यू।
1: सो श्रोताओं, आपको अब ले चलते हैं, बड़ा इंतजार है डॉक्टर प्रेम द्विवेदी के साथ बात करने का, उनकी जर्नी का, उनके सफर का, जिसको उन्होंने एक किताब के फॉर्म में समा दिया है, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसको हम उनके ही शब्दों में सुनेंगे बातें करके। तो हम स्वागत करते हैं प्रेम जी आपका इस गीतांजलि कार्यक्रम में।
2: थैंक यू विवेक जी। एंड मैं इंटरव्यू शुरू करने के पहले, आपसे बातचीत करने के पहले, मैं तीन छोटे छोटे पॉइंट्स कहना चाहता हूँ ना। पहली चीज, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो से कनेक्ट करके और मुझसे बात करने का मौका दिया है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं इसके लिए आपको शुरुआत में ही थैंक यू कहता हूँ। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि आपके सुनने वालों को भी मैं नमस्कार करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के हिंदी प्रोग्राम में अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश निकल जाए तो हमें माफ करें और प्रोग्राम सुनते रहें।
1: No, that is perfectly fine.
2: तीसरा पॉइंट यह है कि आप, आज 31 मई है और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही 35 साल पूर्व मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर आरती द्विवेदी 2 सूटकेस लेकर के इंडिया के लिए न्यूजीलैंड को गए थे ना, तो इसलिए जो है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: थैंक यू। चलिए, समय का ध्यान रखते हुए हर हम आपको खींच लाते हैं अपने इस जो हमें आज अपॉर्चुनिटी मिली है। आपका बहुत सुंदर सा अनुभव है और तो प्लीज़ हमारे श्रोताओं के सम्मुख होते हुए आप अपने बारे में कुछ शब्दों में बताएं, आप किस क्षेत्र में हैं, कब आए और कहाँ रहते हैं।
2: ठीक, सो मैंने लखनऊ से बायोलॉजिकल साइंसेस में पीएचडी किया था। उसके पीएचडी करने के बाद हमें तुरंत ही यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड से मुझे जॉब ऑफर मिला साइंटिस्ट का। मैं वहाँ चला गया। 2 साल रहने के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया 93 में। 93 से 95 तक मैं ब्रिस्बेन में था और 95 को, 1 जनवरी 1995 को मैं एडलाइड आ गया एंड ज्वाइंड एज ए साइंटिस्ट इन एडलाइड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद और भी इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे जॉब मिलते हैं एंड मैं उसमें इसी तरीके से काम करते करते मुझे 35 ईयर्स यहाँ पे हो गए, पता ही नहीं चला।
1: वेरी गुड।
2: लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम मेरा जो रिसर्च वर्क रहा उसमें ज़्यादातर मेरा रिसर्च वर्क है एडल्ट बोन ग्रोथ और चिल्ड्रन के बोन ग्रोथ पे है।
1: वेरी नाइस। चलिए, तो लंबा सफर है, करीब 35 साल लगभग आपको इस एरिया, इस साइड, इस रीजन में आने का। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सफलतापूर्वक सब इतना करा है। तो चलिए, हम आपकी जो पुस्तक है द अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट, बड़ा विचलित करने वाला एक वो है, जिसमें कि आपने कुछ शब्द डाले हुए हैं जैसे कि अनलाइकली। जी, तो कुछ इस पुस्तक के बारे में बताएं आपको, ये आपकी अभी अभी पब्लिश हुई है, ये आपको इसके बारे में ख्याल कैसे आया कि इस पुस्तक को लिखा जाए और इसमें कितना वक्त लगा आपको?
2: तो मैं आपको, आपने 2-3 क्वेश्चंस इसमें छुपे हुए हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ कि व्हाई टाइटल इज अनलाइकली। वैसे तो मैं चाहता था कि लोग पढ़ें उसके बाद अपना इंटरप्रेट करें कैसे मैं अनलाइकली हूँ, लेकिन मैं 4-5 पॉइंट बताता हूँ। मैं एक छोटे गांव से आता हूँ, तो पहले मैं शहर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गाँव से लखनऊ आना पड़ा पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, तो मैं अनलाइकली हुआ। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मैं पढ़ाई ही नहीं करना चाहता था जब छोटा था।
1: ओहो,
2: लेकिन इवेंचुअली उसकी स्टोरी है हमारी बुक में, और मैंने लेकिन पीएचडी की और साइंटिस्ट बना। थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूएस अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आया और अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। चौथा पॉइंट मैं बताऊँ आपको कि हमारे गांव में ये जो एरोप्लेन है इसको चील गाड़ी बोलते थे ना,
1: चील गाड़ी, ओके,
2: चील गाड़ी, और चील, मैं चील गाड़ी पे बैठना ही नहीं चाहता था, क्योंकि भाग गिने में से ऑस्ट्रेलिया में लाके लाया यहाँ पे, और यहाँ से इंडिया के लिए कोई बस और ट्रेन नहीं है, फ्लाइट से जाना पड़ता है। और पांचवा पॉइंट, आप यू विल बी सरप्राइज कि मैं मेलबर्न में रहना चाहता था।
1: क्या बात है।
2: लेकिन एडलाइड में लास्ट जो भी ईयर है, मोर देन 30 इयर्स से रह रहा हूँ, तो बहुत सारे अनलाइकली हैं। और जब आपके श्रोतागण उसको बुक को कभी पढ़ेंगे तो दे विल वर्क आउट व्हाट इज द बेस्ट इन देयर माइंड।
1: अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए, आपको इस किताब का ख्याल क्यों लिखने का आया और कब आपने लिखना शुरू किया?
2: एग्जैक्टली, तो वो पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन आपने जो, तो इसका, इस ख्याल का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। तो एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में तो आप भी इतने दिनों से रह रहे हैं, और जैसे स्पेशल बर्थडेज होते हैं हम लोगों के, चाहे 40, 50 या 60 के, और बच्चे कहते हैं कि डैड अपनी कोई पुरानी कहानी बताओ ना, और फिर उस कहानी को जो आप बता दो तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके अपनी स्पीचेस बनाते हैं ना। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा आपके साथ
1: जी, जी, जी, जी, हाँ, बिल्कुल।
2: और ऑस्ट्रेलिया में जितने इंडियन माइग्रेंट है उनके सबके साथ हुआ होगा ना। So, हुआ क्या है, एक इसी बीच एक बर्थडे पर मेरी डॉटर जिसका नाम आकृति है और मेरा सन जो है उसका नाम प्रखर है, उन्होंने कहा कि डैड आप अपनी स्टोरीज क्यों नहीं लिखते हैं, बड़ी मजेदार लगती है हमको ना, क्यों ना आप एक किताब लिखो इसके ऊपर ना। तो फिर मैंने 31 मई 2022 को लिखना शुरू किया। तो इसलिए आज मुझे 4 ईयर हो गया है, मतलब बुक पब्लिश हो गई है एक वीक पहले। तो ये किताब जो है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ मेरी नहीं है, मेरी वाइफ की भी है, मेरे बच्चों की है, और मैं मेरे अडॉप्टेड फैमिली मेंबर्स की है। अडॉप्टेड फैमिली मेंबर्स जिनको मैं अपना दोस्त, मेरे दोस्त हैं वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी नाम है, उनके भी किस्से हैं उसमें ना। और मैंने इस बुक को यूनिक तरीके से लिखा है, जिसमें जब आप पढ़ेंगे तो इट्स नॉट ए कन्वेंशनल स्टाइल में नहीं है। मैंने आजकल के जमाने में जब लोगों के पास टाइम नहीं है, पढ़ना नहीं ज्यादा चाहते हैं, तो मैंने इसको छोटे छोटे विग्नेट्स के रूप में और छोटे मेमोर्स के उससे क्रोनोलॉजिकल एंड थीमेटिक स्टाइल में लिखा।
1: अच्छा
2: है
1: अच्छा, प्रेम जी अभी हम आते हैं किताब के बारे में, अभी आपसे विस्तृत में बात करेंगे उसके विषय में। हमको कुछ एक अंदर से एक उत्सुकता हो रही है एक पॉइंट पे। अभी आपने जिक्र किया था कि आप एक गांव से आते हैं, पहला मेरा शॉर्ट आंसर में चाहिए उसमें कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। लखनऊ तो आपने बोला था, लखनऊ इज नॉट ए गांव, बट लखनऊ के पास किसी गांव की बात करी आपने, क्योंकि मैं खुद स्वयं लखनऊ का हूं इसलिए ये मेरा सवाल तो बनता है, ठीक है। और दूसरी बात कि गाँव में आपको गांव से शहर और शहर से विदेश, विदेश तो आपने बताया था 91, 93 वगैरह में, 91 में आप निकले लगभग, और लेकिन लखनऊ से, सॉरी गांव से अपने आप आगे बड़े शहर में कैसे, कब आए आप?
2: कैसे आए ना, तो मैं आपको ले चलता हूँ बहुत साल पहले जब मैं छोटा था। मेरे सॉरी गांव का नाम सॉरी हथियाई है जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट है ना।
1: ओके,
2: तो गांव हमारा काफी छोटा था, उसमें स्कूल की भी परमिशन नहीं थी जब मैं वहां पढ़ता था ना। तो पड़ोस के गांव में जो 2 किलोमीटर था, तो हम रोज पैदल 2 किलोमीटर जाते थे, 2 किलोमीटर लौटते थे ना। और वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि वहां पर भी बिल्डिंग नहीं थी, तो हम बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई किया करते थे। और ये सिलसिला कई सालों तक, जब से मैं क्लास 7 में गया तब तक चलता रहा। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया जहाँ पे ईयर 8 में हमें बिल्डिंग, मतलब कमरे के अंदर पढ़ने को मिला, लेकिन वो जमीन में ही बैठते थे। तो इसके बाद जब मैं 13 साल का था
1: जी,
2: तब मैं अपने ब्रदर के साथ एक छोटे से टाउन बेनीगंज है वहां पढ़ने चला गया, फिर हरदोई गया और फिर लखनऊ गया।
1: ओके,
2: तो तो 13 साल से मतलब वो डे आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी मदर रो रही थी और इस तरीके से लग रहा था।
3: किसी

0: हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम द्विवेदी से और उनकी जो लिखी हुई किताब है उसके बारे में और उनकी जो जर्नी है, सफ़र है, वो उनके शब्दों में जानने की कोशिश करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रेम जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने पुस्तक लिखी है, अभी मुझे उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, अभी तो एक इसी हफ्ते शायद आपकी पब्लिश हुई है,
1: पाँच दिन हुए हैं
0: और उसको ज़रूर मैं आगे देखूंगा, बट अपने शब्दों में हमारे लिसनर्स के लिए कुछ शेयर कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपको लगता है कि या ये तो मैं शेयर करना चाहूँगा, अभी कुछ बताइए।
1: बिल्कुल बताता हूँ। मैंने स्टोरीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि विग्नर्स के रूप में लिखा है, छोटी छोटी स्टोरीज या छोटे छोटे किस्से हैं, उसमें एक शेयर करता हूँ, अपने शादी के समय की बात शेयर करता हूँ, क्योंकि वाइफ एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आपकी लाइफ में ना।
0: जी जी।
1: तो मैं लखनऊ से, मेरी वाइफ नागपुर को बिलोंग करती है, और मैं इंगेजमेंट के लिए लखनऊ से नागपुर गया था। इंगेजमेंट के बाद मैं एग्जीबिशन देखने गया उनके साथ में, और तो उस समय लखनऊ के लोग जो होते थे, जो लखनऊ के लोग अगर सुन रहे होंगे, उस इरा में लोग अपने को बहुत स्मार्ट समझते थे, और मैं भी अपने को बहुत स्मार्ट समझता था ना। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे, हमने कहा कि कुछ करते हैं, तो करते क्या, वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था बैलून शूटिंग के लिए।
0: अच्छा।
1: तो मैंने एक गन, हमने ली पांच गन, मैंने ली सॉरी पांच उसको दी और पांच मेरी वाइफ को दी, और मैंने शूटिंग की, और आपको बिलीव नहीं होगा मेरे से एक भी निशाना नहीं लगा ना। अच्छा। और उसके बाद मेरी वाइफ का नंबर था, तो मेरी वाइफ ने शूटिंग की, वन पॉप, सेकंड पॉप, और पांचों उसने पॉप कर दिए बैलून ना।
0: क्या बात है।
1: मुझे बड़ी, जैसे जैसे मैं आपको अंदर से बता रहा हूँ, बड़ी बेइज्जती सी लग रही थी ना, तो मैंने कुछ कमेंट किया उस पे जो बुक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे उस चीज को। लेकिन व्हाट आई रियलाइज कि हमको यार ये पता, सर मुझको पता नहीं था कि मेरी वाइफ जो है NCC कैडेट थी, उसके लिए बैलून शूटिंग करना एक मामूली सी चीज।
0: क्या बात है।
1: इंटरेस्टिंग। तो मैं तो ये कहूंगा कि कंपटीशन में कोई भी हो, पूरी खबर रखनी चाहिए अगले की ना।
0: बहुत अच्छे। तो ये आपका किस्सा उसमें मौजूद है किताब में? हम
1: ये किताब, उसमें किताब में मौजूद है।
0: अच्छा।
1: और ऐसे ही मैंने छोटी छोटी किस्से लिखे हैं, जो लोग छोटी छोटी।
0: कोई और बताइए, कोई और इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए इसी तरह से, कुछ और कहीं पर।
1: चलो दूसरा किस्सा मैं अपने बच्चों का बताता हूँ ना।
0: जी।
1: कि जैसे बच्चे, जब मैं साइंटिस्ट हूँ तो जानते हो, जब साइंटिस्ट की बात आती है तो बहुत सारी चीजें आती है, नोबेल लॉरेट दिमाग में आता है कि हाँ सब साइंटिस्ट ऐसे ही होंगे ना। बच्चे इट्स नॉट लाइक दैट। नाश्ता कर रहे थे, तो आप इमेजिन करो मेरे दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, स्पून खनक रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। मेरी डॉटर पूछती है, कहती है, डैड व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट आर यू, आर यू ए फेमस वन आर द ऑर्डिनरी वन?
0: वाओ।
1: मैंने कहा, मेरे दिमाग पे आई स्टिल रिमेंबर दैट इंस्टेंस, मैंने कहा कि मैं साइंटिस्ट ऑर्डिनरी तो होते नहीं है। मैंने कहा बेटा, मैं ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फेमस नहीं हूँ नोबेल प्राइज नोबेल विनर
0: वालों
1: से, क्योंकि वो लोग टीवी में आते रहते हैं ऑल दोस थिंग। तो थोड़ी देर बाद मेरा सन जो है स्पून मेरी तरफ पॉइंट करता है, तो कहता है कि डैड व्हाई डोंट यू गेट नोबेल प्राइज? तो हमने कहा यार, फिर मेरे पास आंसर नहीं था इन चीजों का, तो ऐसी तो फिर हमने उसको आंसर दिया थोड़ा सा, तो उसने कहा कि अच्छा, हमने कहा उसके लिए स्पॉन्सर कराना पड़ता है, थोड़ा सा स्टार से लाइन होने चाहिए। तो एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर ग्रेग नून है, वो हमारी बुक में भी इन्वॉल्व है, उन्होंने हेल्प करी है, तो वो कहता है कि व्हाई डोंट यू आस्क डॉक्टर अंकल ग्रेग टू नॉमिनेट। तो हमने कहा यार, तुम तो मेरे को बहुत ट्रबल दे रहे हो। तो ऐसी स्टोरीज बहुत होंगी।
0: अच्छा।
1: जो हमारे जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ये स्टोरी नहीं तो दूसरी स्टोरी।
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक जब आप पढ़ोगे।
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। और तो फिर आप जो अभी एडिलेड में रह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो एडिलेड में रहते हुए आपको काफी काफी साल हो गए हैं।
1: जब से 1995 से, 1st
0: जनवरी 1995 से। आपके काफी कुछ किस्से साउथ ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे, वहां से कुछ अनुभव, वहां के कुछ और खैर ये तो हम जब देखेंगे तो बताइए.
1: मैं उनको बता सकता हूँ बहुत सारे.
0: नहीं नहीं मैं अभी उससे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानकारी ले रहा था कि आपकी सफर का पूरा, जब बच्चे छोटे थे तो आपने जैसे शेयर किया, इसी तरह से आगे चल के आपके जर्नी का जो आपका सफर है उसके आपके बीच बीच के किस्से, कुछ ऐसा किस्सा जिससे कि एक, देखिए ये छोट जो किस्से होते हैं सब इंटरेस्टिंग होते हैं और आपके छाप छोड़ देते हैं कि ऐसा वाइफ के साथ हुआ, कुछ ऐसा किस्सा जिसको आपको जीवन में कहीं पर आपको एक बड़ा क्वेश्चन मार्क या एक ऐसा कहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि ये तो सबको जानना ज़रूरी है, ये बात एक लाइफ का एक लेसन है, ऐसा कुछ कुछ दिमाग में आता है? अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं.
1: नहीं जैसे एज ए माइग्रेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस अनुभव रहे यहाँ पे ना
0: जी.
1: और कई किस्से ऐसे हैं जो आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को जानते हैं. आई हैव सफर्ड वन ऑफ दोस थिंग्स एज वेल. लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो नेगेटिव चीजें भी हैं उनको मैंने पॉजिटिव तरीके से इंटरप्रीट करने की कोशिश की.
0: राइट right.
1: तो इस तरीके से हैं, बहुत सारी किस्से हैं. और इनफैक्ट मैंने एक अपनी बुक में एक चैप्टर लिखा है कल्चरल क्रॉसओवर. तो कल्चरल क्रॉसओवर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे दिवाली की लोग नहीं समझते हैं तो उनको समझाने के लिए या बताने के लिए कभी कभी किस्से हुए हैं कि, तो मैंने उन चीजों को लिखा है उसमें ना.
0: राइट राइट राइट.
1: लेकिन मैं उसको और एक्सटेंड करूंगा, मेरा अभी तो उसकी बात ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरी लिखूंगा तब फिर मैं उसको ज्यादा एक्सटेंड करूंगा.
0: एब्सोल्युटली. अच्छा ये बताइए कि आपकी ये किताब कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह से लोग हमारे इसको सोर्स कर सकते हैं?
1: मेरी बुक अमेजोन पे है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया अमेजोन पे है. एंड मैंने अभी 4-5 दिन पहले मंडे को पब्लिश हुई थी उस पे मंडे को. एंड कल जो है, कल क्या परसों की रात में वो कई कैटेगरीज में उसको रैंकिंग मिली, जिसमें एक कैटेगरी में इसको बेस्ट रैंकिंग भी, बेस्ट सेलर का किताब मतलब रैंकिंग मिली हुई, अभी भी उस पर लगी हुई है और वहाँ से वो लोग बाय कर सकते हैं.
0: तो एक बारी अपने अपने अपने बुक से आप उसका टाइटल जरा सा बताएं उनको.
1: टाइटल हमारा जो बुक है, बुक का टाइटल है दी अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट.
0: Right, unlikely.
1: ये तो टाइटल हो गया, उसका सब टाइटल है From a village boy to a scientist in Australia.
0: अच्छा अच्छा.
1: Against all odds.

0: फिल्में वगैरह देखते हैं आप सर?
1: नहीं बिल्कुल फिल्में देखते हैं।
0: कोई आपकी फेवरेट फिल्म जो आपने देखी हो, पसंद आई हो, या मुझे रिकमेंड करना चाहेंगे?
1: नहीं नहीं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। इतनी पिक्चर अभी तो इतनी पिक्चर देखते हैं तो जानते हो कि कई कई बार तो नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारी चीजें पिक्चरें देखता हूँ। अभी कुछ रिकमेंड क्या करूँ, सबकी अलग अलग चॉइसेस
0: हैं। जी जी जी जी।
1: लेकिन एक मैं पुरानी पिक्चर है, अगर आपको याद हो, मुगले आजम थी ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो मैंने उसको किया, मेरे नेफिल ने उसको कलर्ड पिक्चर में भी बनाया था ना बॉम्बे में। उसको मैं पता नहीं हूँ, मुझे पसंद आती है ना,
0: नहीं तो अच्छी तो थी उसमें,
1: हाँ।
0: उसमें सारे तो मसाले थे, आपका रोमांस था उसमें, रिवेंज था उसमें, एक बाप बेटे का बीच का कन्फ्लिक्ट था उसमें, बहुत कुछ था।
1: हाँ। मुझे जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल होती है
0: जी,
1: वो बहुत पसंद आती है ना, खिस्ट्री होती है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इतनी भी चाहे बाजीराव मस्तानी आई इधर या जो अभी कई पिक्चरें आई ना हिस्ट्री पे
0: जी,
1: तो मैं हिस्ट्री की स्टडी करता हूँ, जिससे कि मैं देखने जाने के पहले उसको मैं थोड़ा सा नॉलेज ले जाता हूँ ना, और फिर उसमें तो थोड़ा बहुत उससे होता है हिस्ट्री से, मैं इंजॉय करता हूँ।
0: वेरी गुड वेरी गुड। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग वगैरह जो मैं आपको इस प्रोग्राम में भी बजाऊं फिर जिंदगी के सफर से?
1: हाँ आप मेरे चॉइस हमारी इसके हिसाब से आप जो बजाएंगे वो अच्छा, अच्छा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर डालूंगा। जो आपके आपकी जो फीलिंग्स हैं जो इस किताब के माध्यम से आ रही हैं उनको लेते हुए मैं ज़रूर गाने बजाऊंगा इसमें, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अपने भी एक सफ़र होता है, अपनी भी यादें होती है। अब मेन चीज़ ये है कि जब आपकी किताब पढ़ो, आपकी कहानी पढ़ो, तो अपने आप की कहानी, अपने आप के सफ़र में आप रिलेट करते हो कि हाँ ऐसा समथिंग मेरे साथ इस दौरान हुआ था, और तो वो चीज़ें आपको यादों के सफ़र में ले जाती हैं। मेरे ख्याल से इसका एक ये बहुत बड़ा मेरे लिए टेक अवे तो यही है कि आपने इतना मेहनत करके अपने संकलन निकाला है, सो दैट सो सो सो ग्रेट। अच्छा तो अब आप इस वक्त अभी आप वर्क कर रहे हैं या वर्क क्या अभी क्या स्टेटस है आपका वर्क का?
1: तो मैंने जो लैब वर्क है वो बंद कर दिया है।
0: अच्छा।
1: You can say कि I am retired from there, but normally I don't like to say. मैं कहता हूँ scientists never retire.
0: Okay.
1: और क्योंकि as a scientist मैं scientist ही हूँ, लेकिन I have joined in a private college which like they call is the Adelaide Institute of Sciences. और मैं उसमें उसका जो एकेडमिक बोर्ड है उसका मेंबर भी हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ, उसका चेयरमैन भी।
0: वेरी गुड वेरी। तो आप मतलब यू कीप बिजी और आपके जो रिच अनुभव है उसका लोग जो है आगे जो है वो तो बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज
1: मैं किताबों पे फोकस कर रहा हूँ, इस पे मुझे 4 साल लग गए इसको करने में ना।
0: अच्छा।
1: एंड जब ही जैसे जैसे बुक की 4 साल की बात आती है, लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा क्यों इतना टाइम लग रहा है।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं आपको बताऊं, खाली लिखना नहीं था, लिखने के मामले में बहुत तेज हूँ, बहुत जल्दी लिख देता हूँ, लेकिन लिखने का स्टाइल सीखने में, साइंस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग टू डिफरेंट थिंग्स, तो उसको मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा कि कैसे लिखनी चाहिए, कौन सी बेस्ट तरीका है लिखने का। रिसर्च में मुझे टाइम लगा, कोर्सेज किए हमने, क्लब्स ज्वाइन किए राइटिंग।
0: वेरी गुड वेरी गुड। सो आई मीन ये तो सही बात है ना कि जब आप करो कोई चीज़ तो उसको तन मन धन हर तरीके से आप सारा करके तब तो इंटरेस्टिंग बनेगा। अच्छा, समय का ज़रा ध्यान रखते हुए क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है मात्र 1 घंटे का ही होता है, तो हमें आपसे बात करके प्रेम जी बहुत ही आनंद आया, और आपने उत्सुकता बढ़ा दी है इस किताब में डूबने की और समझने की कि कैसे आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, और कुछ आप हमारे श्रोता जो कई हैं जो हमारे उस समय के लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, और कई हमारे श्रोता ऐसे हैं जो नए माइग्रेंट्स हैं, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उनको अपने अनुभव से कि क्या कोई मैसेज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से? यस,
1: 2-3 पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है किसी सिल्वर स्क्रीन फेमस व्यक्ति की कहानी नहीं है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, और मुझे और मैंने अपने राज से खुद बनाए, जिसे हम सेल्फ लर्निंग या स्वाध्याय भी कह सकते हैं। मैं आपके माध्यम से आपको, जितने श्रोतागण हैं और ऑस्ट्रेलिया के सभी माइग्रेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग अपनी अपनी किताब जरूर लिखें। और उसका कारण क्या है कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे, उनकी फैमिली हिस्ट्री जानेंगे, तो उनको उनका पूरा इतिहास पता चलेगा, पता चलेगा। क्योंकि आप ये देखो कि इतिहास जब लिखा जाएगा तभी पढ़ा जाएगा, नहीं तो साधारण आदमी जो हम जैसे लोग हैं उनका इतिहास तो खत्म ही हो जाएगा।
0: बहुत
1: ये मेरा मैसेज है, लोगों को करना चाहिए।
0: बहुत ही अच्छी बात है। और प्रेम जी, आपको एक बार ही फिर से बधाई हो आपकी पुस्तक के लिए, और अधिक से अधिक लोग इसको देखें और आपके अनुभव से फ़ायदा उठाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी की तरफ से। और चलते चलते कुछ
1: मेरी तरफ से भी आपको और आपकी गीतांजलि जितनी टीम है, जो आपने मेरे लिए टाइम लगाया, मेरी बुक में अभी 5 ही दिन हुए हैं, एंड और आपने मुझे

0: कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स। नाट्य दर्पण 10 वर्षों के सफल प्रदर्शन को सेलिब्रेट कर रही है और फिर ला रही है 2 अंकों में प्रस्तुति रंगमंच पर। पहली प्रस्तुति 20 जून को 3 बजे, शादी सिलेबस और दिस टाइम यू डिसाइड। दूसरी प्रस्तुति 27 जून को 3 बजे, हमीदा बाई की कोठी। आप ट्राई बुकिंग पर जाकर टिकट्स बुक कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं मंदार वैद्या से 0430666898 पर।
1: चलिए आपको कुछ शेयर कराता हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज जिनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, सुनते हैं उनका अपना क्या किस्सा है अपने बारे में या अपने कुछ। ये है सचिन तेंदुलकर।
2: I went out to bat in the first game and I was clueless. I had no idea. I was getting beaten by the pace. I'd never experienced someone bowl at 90-95 miles an hour. This is a wrong place and you got in the wrong place at the wrong time. And I got out. I got out on 15. While walking back, I somehow controlled my tears. I was only 16 then, so I was allowed to do all that. I went to the bathroom and I cried and I looked at myself in the mirror, said this level of cricket is not for you. You're not good enough to do all this. And the next game, I decided not to look at the scoreboard. I said, the only time I'm looking in the direction of the scoreboard is to look at the clock, because I had decided my target was that I'm going to bat for half an hour, not worrying about runs. And after half an hour, I got used to that pace and I said, I can deal with this pace. And that changed my thinking. I scored 59 in that test match. And from there on, I never doubted my ability.
1: और अब सुनते हैं 2 महान कलाकारों को जिनकी आवाज को लेकर दुनिया जानती है। अमीन सयानी साहब बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन से। ये अमीन सयानी साहब ने ये बताया कि उनको, जो कि रेडियो में इतना पॉपुलर हुए कि जिसकी इंतहा हो गई, उनको बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ऑडिशंस में उनको रिजेक्ट कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो ने। तो उनका जो पेन था, बाद में तो वो कहाँ पहुंचे तो सभी जानते हैं, उनका जो पेन था वो उसके बारे में ये जिक्र है। सुनिए और देखिए उनका किस्सा और उनका एक्सपीरियंस।
3: उससे जो चोट मुझे लगी थी ना, उसका घाव करीब 15 वर्षों बाद सुनिए कि कैसे भरा। एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरजदार आवाज की, तो अमिताभ बोले,
4: नहीं एक मिनट ठहरिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
3: हाँ जरूर फरमाइए।
4: और वो ये है कि आप लोग मेरी आवाज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं?
3: भाई तारीफ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अमिताभ साहब आपकी आवाज है ही बड़ी अच्छी।
4: अमीन साहब मैं तो ऐसा नहीं समझता।
3: अरे मगर आखिर क्यों भाई?
4: इसकी वजह है, कॉलेज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिल्ली में, मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर कुछ प्लेज करने चाहिए
3: जी,
4: और इसके लिए मैं वॉइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पे, और वहां पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
3: रिजेक्ट कर दिया?
4: जी हाँ, 2 बार गया मैं, एक बार अंग्रेजी के लिए, एक बार हिंदी के लिए। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी मुझे मिली जिसमें लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वॉइस इज अनसूटेबल फॉर आवर पर्पसेस।
3: तो बहनो रही, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे जब अमिताभ बच्चन जैसे गजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था, तो साहब मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था।
1: कैसा रहेगा मीनू जी अगर हम अपनी पॉडकास्ट सीरीज द मीनू एंड विवेक्स खट्टा मीठा शो का एक अंश सुनाए?
5: वाह क्या बात है, एकदम फिट दुरुस्त रहेगा विवेक जी। उस पॉडकास्ट में हम दोनों ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के छोटे छोटे किस्सों को ही शेयर किया था। अब देर कैसी, बस सुना डालिए
1: द मीनू एंड विवेक्स खट्टा मीठा शो। टेल मी समथिंग, शादी से पहले कॉलेज में या यूनि में थी तो शादी या हस्बैंड के बारे में क्या थॉट्स या क्या दिमाग में चलता था तुम्हारे?
5: मेरे थॉट्स हस्बैंड को लेकर बड़ा अजीब सा मेरा आइडिया था फ्यूचर हस्बैंड को लेके। आप हंसोगे डेफिनेटली।
1: नो प्रॉब्लम्स, ये शो ही ऐसा है, डोंट वरी, जस्ट कीप गोइंग।
5: मैं सोचती थी जब जॉब मैं करूंगी तब अपने बॉस से शादी करूंगी। साउंड्स फनी ना?
1: ये
5: शायद फिल्मों से ज्यादा प्रभावित थे।

0: चलो कुछ बिगड़ा नहीं है यार, हमको बॉस समझ लो और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, विन विन फॉर बोथ। अच्छा, लड़कों के साथ ट्रेजेडी रहती है जब तक वो मैरिजेबल होते हैं, लाइक अच्छी जॉब, जिम्मेदारी, बहन की शादी एटसेट्रा, तब तक साथ ही लड़कियां अपना घर बसा लेती हैं और कुछ समय में एक आधे बच्चे लेकर छुट्टियों में आती हैं घर, मिलती है, देखो बेटा ये मामा है, नमस्ते करो, नमक छिड़कती है। अच्छा, हमारे डैड की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस थी जब प्रपोजल्स वगैरह चल रहे थे, और इस बात का मुझे देर से पता चला, प्रपोजल्स यानी लड़की की फोटो, बायोडेटा, यही होता था, और उनकी एक अलमारी थी उसमें सीक्रेट लोकेशन पर ये सब इकट्ठा रहता था, और उसमें से फिल्टर होके कुछ जो है वो मेरे पास होते थे जो उनको ठीक लगते थे, ठीक है। तो बट एनीवेज, हम ओवरऑल प्रोसेस से तो बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उनके आगे जिगरा नहीं था बोलने का। फिर भी जब वो स्टेज आती थी कि ना बोलना है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी क्लास लगती थी। क्या कमी है लड़की में, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, अब उनको कैसे बताएं कि बस एक मेरा दिल है जो धड़क नहीं रहा है।
1: How sad. हम लड़कियां कैसे पिसती हैं आपको पता है ये बात?
0: नहीं नहीं नहीं, बताओ।
1: हमको 24 घंटे पहले बताया गया था कि लखनऊ चलना है लड़का देखने।
0: ओके।
1: तैयारी कर लो, मतलब जैसे कोई ऐसे कंपटीशन में बच्चे को ले जा रहे हो। उसी दिन मैं अपने छोटे छोटे छोटे छोटे बाल कटवा के घर लौटी थी। पहली बार इतने छोटे बाल कटवाए थे। इतनी डांट पड़ी कि पूछो मत। एक तो हमको पहले इन्फॉर्म नहीं किया करा, ऊपर से डांट।
0: मत दुखी मत हो, तुम रियली बहुत अच्छी लग रही थी जब पहली बार हम लोग मिले थे, ट्रस्ट मी।
1: थैंक यू। जरा अपने पहली मुलाकात को याद कर लिया जाए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: याद है, जब हम पहली बार मिले थे लखनऊ गोमती नदी के किनारे बुद्धा गार्डन में।
0: हाँ, बुद्धा गार्डन, बुद्धा यानी शांति का प्रतीक, बस प्रतीक बनकर रह गया मेरी जिंदगी में।
1: मैं अपने मम्मी पापा और मामा और कजन ब्रदर के साथ थी, और आप अपनी बहन और पेरेंट्स के साथ।
0: ठंडी ठंडी थम्सअप पी थी वहीं।
1: हाँ, थम्सअप याद है, पर हमने किस कलर की साड़ी पहनी थी वो याद नहीं होगा माशे को।
0: अरे, एक दूसरे को दबी नजरों से देख मुस्कराना, वाह, अभी भी याद है। अर्ज किया है, इस डर से गौर से नहीं देखा तुझको, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। वाह वाह वाह वाह
1: वाह वाह, क्या फेंका है। फिर हाँ, हम अपने कजन के साथ हजरतगंज मार्केट गए थे।
0: ओके।
1: पीछे पीछे जनाब अपनी बहन के साथ आ गए और लग गए इम्प्रेस करने। आपने पूछा क्या लोगी, पहले मुंह से निकला आइसक्रीम। तुरंत हमने ही मना कर दिया, जानते हैं क्यों?
0: क्यों?
1: कटी पतंग फिल्म का वो सीन सामने याद आ गया, जब आशा पारेक राजेश खन्ना को एक लड़की को दिखाने ले जाती है, तब राजेश खन्ना के पूछने पर उस लड़की के मुंह से निकल जाता है आइसक्रीम। बाद आशा पारेक राजेश खन्ना से पूछती है कैसी लगी वो लड़की, तो वो बोला हाँ बच्ची है, आइसक्रीम खाती है, समझे, इसीलिए हमने आइसक्रीम खाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। खैर, शायद हमने उस वक्त मिल्कशेक लिया था, फिर कुछ और गपशप, और उसके बाद एक दूसरे को जानने की कोशिश की थी। फाइनली हो गई पक्की बात दोनों की रजामंदी से। फिर सिलसिला चिट्ठियों का, फोन कॉल्स का, ट्रेन के सफर का।
0: हाँ जी,
1: मतलब सफर अरेंज से लव मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशन का। ये स्टेप अब अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे ना एक्सटिंक्ट होता जा रहा है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: पर अनुभव हमारा कहता है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरेबल पीरियड इन वन्स लाइफ।
0: आई एग्री परफेक्टली विद यू।
1: आपने जो एंगेजमेंट से पहले ड्रामा किया था जरा बयान करिए, मुझे तो डांट बहुत पड़ाई थी।
0: एंगेजमेंट से पहले वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में थे एंगेजमेंट से ठीक दो दिन पहले, शॉपिंग करने गए थे आप अपनी मम्मी पापा के साथ, और दोपहर के करीब दो ढाई बज रहे होंगे। शॉपिंग का काम खत्म हो गया था, आप लोग रिक्शे में सवार होने के लिए तैयार ही थे, तभी मैंने अचानक ऑफर किया पापा को कि पापा आप लोग रिक्शे पे चलें, मैं मीनू को मोटरसाइकिल से ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ा प्रकाश की कुल्फी फालूदा खिला दूं। तो इतना प्रेम देखकर उनसे मना नहीं करा गया, और फिर वो तो निकल लिए रिक्शे से। 10-15 मिनट लगे होंगे उनको कैसरबाग तक पहुंचने में, और फिर मैं तुमको लेकर बाइक में पहुंच गए मैटनी शो हजरतगंज में देखने।
1: हाँ, ऑफर मेरे फेवरेट जितेन की फिल्म का था, मना ना कर सकी। बाय गॉड, हम भी कितने बेकूफ थे। शाम को जब आप घर छोड़ने गए तो हमको आगे कर दिया, पहले आप पहले आप।
0: जाहिर सी बात है, घर वाले परेशान कि आखिर बच्ची उनकी कहाँ चली गई। पूछा गया कहाँ रह गए थे, उत्तर बड़ा सीधा, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी। नया नया दामाद, भला कैसे डांट पड़ती है।
1: हाँ, डांट तो हमें खानी पड़ी ना। वो भी क्या दिन थे।
0: APJ कलाम साहब ने सही कहा है, Sometimes it is better to bunk a class and enjoy with friends. Because now when I look back, marks never make one laugh, but good memories do. Albert Einstein अंकल ने भी बोला है, having fun is the best way to learn. और अपनी बात करें तो हमारा ये मानना है कि अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखिए, चाइल्ड की सूरत है उसे जिंदा रखें। द मीनू एंड विवेक्स खट्टा मीठा शो।
1: हम ये समझते हैं हमारी जिंदगी का प्रेजेंट यानी आज तब इंटरेस्टिंग होता है जब हम अपने पास से कनेक्टेड रहते हैं।
0: जी जी जी,
1: शायद इसीलिए हम पुराने किस्से को याद करते हैं, ताजा करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और खुश होते हैं कि हमने पुराना क्या किया।
0: बेशक बेशक बेशक बेशक मीनू जी, बशीर बद्र साहब एक मशहूर शायर, जो अभी रिसेंटली उन्होंने अभी एक दो हफ्ते पहले ही उनका निधन हुआ था, उनका एक शेर अर्ज करते हैं। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, कोई मिला तो बिछड़ गया, नए किस्से पुरानी किताबों में मिलते रहे।
1: वाह वाह, क्या बात, गहरी बात कह दी। लगता है विवेक जी घड़ियों की सुई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ हमको श्रोताओं से विदा लेना पड़ेगा। मीनू का आप सभी से नमस्ते और शुभ रात्रि, और आप भी अपने जिंदगी को और किस्से बनाएं, और हम भी चलते हैं अब आगे अपनी जिंदगी के किस्से और बढ़ाने।
0: हाँ मीनू जी, और श्रोताओं गण, आपसे विदा लेने का वक्त, उम्मीद करते हैं कि आपने ये जिंदगी के किस्से, छोटे छोटे कुछ तड़के वाले कुछ भड़के वाले सुने, और इंटरव्यू का भी आनंद लिया होगा, और आपका आने वाला सप्ताह अच्छा हो, आने वाला समय अच्छा हो। गुड नाइट, शब खैर।

0: नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।